मत उच्ची मत पत दरख आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दाता जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तों पंथ नूं भी छोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन ते सेवा संभाल दा दान अपने खालसा पंथ नूं बख्शो निमाणियां दे माण निताणियां दे ताण ओटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु जी तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी ने पार बख्शा मेरा कीतियां सब ते वड समर्थ गुरदेव सब सुख पाई तिसकी सेव आप जी ने मेरा बख्शा कीतियां शाम दे सोने दीवान सजे सतगुरु जी इलाही बाणी आरती उपरंत अखंड कीर्तन आप जी दे गुणां दा गायन होया सतगुरु जी ओ वाहगुरु सिमरन अभ्यास होया सतगुरु जी आपने कृपा मेर दी दृष्टि कीती सेवकां पासों सेवा लई होईयां भुलां गलतियां बख्श लैणियां अगे तो होर श्रद्धा भावना सहित आप जी की सेवा करन दी दात बख्शिश करनी बाणी दा भाव सरबत आईयां संगतां दे हिरदे अंदर वसाउणा सतगुरु जी ओ सरबत पढ़न सुनन वालियां नूं बाणी नाल प्रेम बख्शिश करना इस तरह संगत नाल प्रेम बख्शना सतगुरु जी ओ सेवा सिमरन दियां दातां बख्शिश करनियां आप जी दियां बख्शियां दातां विचों संगतां वलों तिल फुल भेटावां आप जी दे चरणां च हाजर होईयां ने संगतां अपने घरां च बैठियां सतगुरु जी ओ मीडिया के माध्यम राही कीर्तन कथा सरवण करदिया गुरु घर वास्ते सेवावां भेज रहे ने सतगुरु जी बीबी अंचल दी नानी जी जो पिछले दिन चढ़ाई कर गए सन उन्हां दी मिठी याद विच उन्हां दी आत्मक शांति वास्ते अरदास बेनती करदिया परिवार वालों गुरु घर वास्ते 101 डालर माया हाजिर हुई है आप जी प्रवान करो विछड़ी आत्मा नूं अपने चरणां विच निवास बख्शिश करो परिवार नूं भाणा मिठा करके मनन दी दात बख्शिश करनी आप जी दे घर करदे सेवक बल तेज सिंह नवी गड्डी दी दात आप जी ने बख्शिश कीती है शुकराने वजो आप जी दे चरणां च अरदासां बेनतियां करदे ने अपना मेहर पिरथ रखदिया होया सुखंडाई करनी सतगुरु जी ओ गड्डी चलांदिया अपने नाम सिमरन अपनी याद च रखना सतगुरु जी ओ होर जो जो संगतां आप जी दे चरणां नाल जुड़ियां सतगुरु जी ओ सरबत नूं अपने अंदरों करो नाम दी दात गुरसिखी जीवन बख्शिश करना इस वक्त आप जी दे दीवान दी संपूर्णता जी की अरदास है जी पावन पवित्र हुक्मनामे बख्श

ना व्यापे, प्रभु के सिमरन दुख ना संतापे, प्रभु का सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग, प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नाम निध, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभु के सिमरन जप तप पूजा, प्रभु के सिमरन बिनसे तुजा, प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभु के सिमरन दरगह मानी, प्रभु के सिमरन होए सो भला, प्रभु के सिमरन सुफल फला, से सिमरे जिनाप सिमराए, नानक ताके लागू पाए, प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभु के सिमरन उधरे मुचा, प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभु के सिमरन सब की सुझे, प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूर्ण आशा, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माहे समाए, प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासम दसना, प्रभु को सिमरे से तनवंते, प्रभु को सिमरे से पदवंते, प्रभु को सिमरे से जन प्रवान, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरे से बेमुहताजे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा विनाशी, सिमरन ते लागे जिनाप दयाला, नानक जन की मंगेर वाला, प्रभु को सिमरे से परोपकारी, प्रभु को सिमरे तिन सद बलहारी, प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरे तिन आनंद कनेरे, प्रभु को सिमरे बसे हर नेरे, संत कृपा ते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरे पहाग, प्रभु के सिमरन कारज पूरे, प्रभु के सिमरन कभू न चूरे, प्रभु के सिमरन हर गुणवानी, प्रभु के सिमरन सह समानी, प्रभु के सिमरन नेचल आसन, प्रभु के सिमरन कमल विगासन, प्रभु के सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार, सिमरे से जन जिन को प्रभु माया, नानक तिन जन शरणी पाया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग वेद उपाय, हर सिमरन पहे सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नी चहु कुंट जाते, हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरुमुख हर सिमरन तिन पाया, सलोक दीन दर्द दुख पंजना, कड़गट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी, आयो नानक के प्रभु सात, अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाई, जय महा पयान दूत जम दले ते, केवल नाम संग तेरे चले, जय मुश्किल होवे तो भारी, हर को नाम के नमाहे उधारी, अनक पुनः चरण करत नहीं तरह, हर को नाम कोट पाप पर हरे, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख का नेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हुए सुखिया, लाख करोरी बंद न परे, हर का नाम जपत निस्तर, अनक माया रंग तिख न बुझावे, हर का नाम जपत अघावे, जे मार्ग इहु जाति केला, तह हर नाम सर्वोत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा त्याइए, नानक गुरुमुख परम गत पाइये, छूटत नहीं कोट लखवाही, अनक नाम जपत तह पार कराही, अनक बिघन जाय संघारे, हर का नाम तत्काल उधारे, अनेक जोन जन में मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हो मैला मल कबू न तो वे, हर का नाम कोट पाप खोवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइये साध के संग, जय मार्ग के गने जाहे न कोसा, हर का नाम उहा संग पोसा, जय पेंडे महान गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जहाँ पंथ तेरा को ना सिंजानू, हर का नाम दे नाल बचानू, जय मां पहान तू तपत बहु काम ते, हर के नाम की तुम ऊपर छाम, जा तिरखा मन तुझ आकर खे थे, नानक हर हर अमृत बरखे, भक्त जना की बरतन नाम, संत जना के मन विश्राम, हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उधरे जन कोट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात, हर जन के हर नाम निधान पार, ब्रह्म जन की नोदान, मन तन रंग रत्ते रंग एके, नानक जन के बिरद विवेके, हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर के नाम जन को तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत का परे ना पांग, हर का नाम जन की वड्याई, हर के नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाही वियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा, हर हर जन के माल खजीना, हर तन जन को आप्रभ दीना, हर हर जन के ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रसमाते, आठ पहर जन हर हर जपे, हर का भगत प्रगट नहीं छपे, हर की भगत मुकत भव करे, नानक जन संकेते तरे, पार जाते हो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम, सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत रिद्वसे, संत प्रताप दुर्त सब

0: नसै संत का संग वडभागी पाईए संत की सेवा नाम त्याईए नाम तुल कछ अवर ना होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टंडोल पूजस नाई हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मध्य फिरया अनेक प्रकार की बहु जतना पुण्य दान हो मैं बहु रतना शरीर कटाए हो मैं कर राती व्रत नेम करे बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नान गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिर चिर जीव महादास तपी सृथ्वी वह
1: न्यूली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संजम साधन निमुख निमुख कर श्री कटावे तो पी हो मैं मेल न जावे हर के नाम संसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ देह छुटै गर्भ गुमान न मन ते हुटै सोच करे दिन सर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करे मन ते कबहु न बिखिया टरे जल तो वह बहु देह अनीत शुद्ध कहाँ होए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतित बहुमूच बहुत स्याणप जम का भाव व्यापै अनक जतन कर तिसन ना त्रापै पेख अनेक अगर नहीं बुझै कोट उपाव दरगह नहीं सजै शूटस नाही उप प्याल मोह व्यापह माया जाल अवर करतूत सकली जम डानै गोविंद भजन बेल तिल नहीं मानै हर का नाम जावत दुख जाए नानक बोलै सहज सुभाए चार पदार्थ जे को मांगै साध जना की सेवा लागै जेको अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सद गावे जेको अपनी शोभा लोरै साध संग हे हौ मैं शोरै जेको जन्म मरण ते डरै साध जना की सरणी परै जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक तांकै बल बल जासा सगल पुरख मह पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान आप सिखाओ जो जाने नीचा सो गनिय सब ते उच्चा जाका मन हुए सगल की रीना हर हर नाम तिन घट घट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेखै सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा निर्धन कौ धन तेरो नाओ निथावै को नाओ तेरा थाओ निमानै कौ प्रभ तेरो मान सगल कटा को देवदान करण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जन हो आपे अपन संग आप प्रवराते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम मह उदम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी

बलुआ केगरा पीतर बसै अनद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मन मन है प्रतीत काल न आवै मूड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ त्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख ले हो आपन कर कर्म

अष्टपदी दस वस्तु ले पाछ पावे एक वस्त कारण बिखोट गुवावे एक पी न दे दस पी हिर ले तौ मूड़ा कहो कहां करे जिस ठाकुर स्यों नाही चारा ता कहो कीजै सद नमस्कारा जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहू मन बूठा जिस जाने अपना हुक्म मनाया ना सर्व थोक नानक तिन पाया अगनत साहो अपनी दे रास खात पीत बरत अनद उलास अपनी अमान कश बाहर साह ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बहुर उसका विश्वास न होवे जिसकी वस्तु तिसे आज्ञा रख है प्रभ की आज्ञा मन मथ है उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनिक भांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिरख की छाया स्यों रंग लावे ओह बिनसे ओह मन पछतावे जो दिसे सो चालन हार लपट रहे तह अंध अंधार बटाऊ स्यों ज्यो लावे नेह ता कौ हाथ न आवे केह मन हर के नाम की प्रीत सुख दाई कर कृपा नानक आप लय लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सुबाया मिथ्या होमै ममता माया मिथ्या राज जोवन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रत हस्ती असब वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान अस्थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हस्त पर दर्प कह रह।

प्रभ ताकै जे प्रसाद तुझ को न पहुँचै मन सास सास सिमरह प्रभ उचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ता की भगत करे जे प्रसाद अपूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद असवहस्त असवारी मन तिस प्रभ कौ कबहु ना बिसारी जे प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसह त्याई तिसह त्याई जो एक अलख है ईहां ऊहां नानक तेरी रखै जे प्रसाद करह पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान।

सुख सहजे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चल है, जे प्रसाद संपूर्ण फल है, जे प्रसाद परम गत पाव है, जे प्रसाद सुख सहज समाव है। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो हो, गुर प्रसाद नानक मन जागो हो। जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ का मूल न मनोह विसार।

अष्टपदी साध कै संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटे अभिमान साध कै संग प्रगटे सुज्ञान साध कै संग बुझे परम नेरा साध संग सब होत निबेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन परानी नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा पर फुलै साध कै संग आवह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहूं तावै साध संग अस्तित मन पावै साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध

साध प्रभु बनयाई। साध के संग न कबहू तावै, साध के संग सदा सुख पावै। साध संग बस अगोचर लहै, साधु के संग अजर सहै। साध के संग बसै थान ऊचै, साधु के संग महल पहुँचै। साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध के संग पाए नाम निदान, नानक साधु के कुर्बान। साध के संग सब कुल उदार है, साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है। साधु के संग सो धन पावे, जिस धन ते सब को वरसावे। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुरदेवा। साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध के संग सर्व थान गम, नानक साध के संग सफल जनम। साध के संग नहीं कछु काल, दर्शन भेटत होत निहाल। साध के संग कलुखत हरै, साध के संग नरक पर हरै। साध के संग

नानक उदरह साध सुन रसै साध कै संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ साध कै संग ना मन ते विसरै साध संग सर पर निस्तरै साध कै संग लगे प्रभ मीठा साधु कै संग घट घट डीठा साध संग पै आज्ञाकारी साध संग गत पई हमारी साध के संग पै मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग।

ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सुतर समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पय, नानक जिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी।

ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपर्यास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी क्या गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार।

आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी कह हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी का बल बल जाइए। ब्रह्म ज्ञानी का खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी का सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदाक्षर।

ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जीव का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता, ब्रह्म

अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन मह प्रीत निरंजन दर्श पर त्रय रूप न पेख नेत्र साध की टहल संत संग

मन ते टरै इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिस्न की माया ते होए भिन्न कर्म करत हुए नहीं कर्म तिस वैष्णो का निर्मल।

अष्टपदी। कई कोट होए पूजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पए तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमह उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपिसर होते, कई कोट आत्म

पाव है। कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ कह रह, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट प्रदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत तार है, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तार है, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमृत अर्शास्त्र, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिरजीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जग

कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहजो निफिर है, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काल है थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह भाणा तह तह राखे, नानक सब किस प्रभ कह हाथे, कई कोट भय वैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ का खो जनते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिन को मिल्यो प्रभ अविनाश, कई कोट मंगे सतसंग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनका होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी।

बलहारण जल थल महियन सोए अष्टपदी करण करावन करने जोग जो तिस पावे सोई होग खिन में थाप उथा पनहारा अंत नहीं किछ पारा वारा हुक्मे तार अधर रहावे हुक्मे उपजे हुक्म समावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वड्याई

बिन सास ते रखै प्रभावै ता हर गुण पाखै प्रभावै ता पतत उधारै आप करै आपन विचारै दुहा सिरिया का आप स्वामी खेलै बिकसै अंतर जामी जो पावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर न आवै कहो मानक ते क्या होया वै जो तिस पावै सोई करावै इसके हाथ होए ता सब किचले जो तिस पावै सोई करे अनजानत बिखिया महरच है जे जानत आपन आप बचै पर में पूला दह दिस्तावै निमक माहे चार कुंट फिर आवै।

अनेक बढ़ाई, इसका बल नहीं इस हाथ, करन करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो, ज्योतिष पावे सोई फुंथियो, कबहू ऊंच नीच में बसे, कबहू सोग हरक रंग हसे, कबहू निंद चिंद व्यवहार, कबहू ऊब आकाश प्यार, कबू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावन हार, कबू नृत करे बोपात, कबू सोए रहे दिन रात, कबू महाक्रोध विकराल, कबू सर्व की होत रवा।

कभू होए पंडित करे बखियान, कभू मौन तारी लावे ध्यान, कभू तट तीर्थ स्नान, कभू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कभू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन पर मैं परमिया, नाना रूप जो स्वागी दिखावे, जो प्रभावे तिवे नचावे, जो तिस पावे सोई होए, नानक दूजा अवर न कोई, कभू सात संगत एहु पावे, उस स्थान ते बहुर न आवे।

कै संग जो जल में जल आई खटाना त्यो ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ के

अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान तो नरक पाती होवत स्वान जो जाने में जो बनवंत सो होवत बिस्टा का जंत आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरे बो जोन परमावे तन भूम का जो गरे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीब बसावे नानक यहाँ मुक्त या गै सुख पावे तनवंता हुए कर घर बावे तृण समान कछ संग न जावे बोलस कर मानुक ऊपर करे आस पल भीतर ताका हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन में हुए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी तरम राय तिस करे कुवारी गुर प्रसाद जका मिटे अभिमान सोजन नानक दरगे परवान कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले बिरतारे अनेक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनेक जतन कर आत्म नहीं।

जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख ना ही कोए, जब ए जाने मैं किछ करता तब लग गर्व जोन मैं फिरता, जब तारे को बैरी मीत तब लगने चलना ही चीत, जब लग मोह मगन सगमाए तब लग तरम राय दे सजाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छूटे, सहस खटे लक को उठतरावे त्रिपत न आवे माया पाचे पावे, अनिक भोग भिख्या के करे न तृप्तावे खप खप मरे, बिना संतोख नहीं कोरा जय सुपन मनोरथ बिरते सबका जय, नाम रंग सरब सुख होए बड़ पागी किसे प्राप्त होए करन कर।

जय दिखे करे विवेक आपे एक आपे अनेक मरे न बिनसे आवे न जाए नानक सधी रे असमाई आप उपदेश समझे आप आपे रचिया सबके साथ आपकी नो आपन विसार सब कुछ उसका करने हार उससे पिन कहो किच होए थान तनंतर एक कैसोए अपने चल

देवन कोए कह भगवान जिसके दिए रहे अगाए बोर न तृष्णा लगे आए मारे रखे को आप मानु कह किश नाही हाथ तिसका हुक्म बूझ चुकोए तिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिगन न लागे कोए उस्तत मन

एक ठाकुर का रंग साथ संग बिन सह सब संग चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटे पाप जपी है हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगे नानक उजल मथा बड़ पागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार से तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पचाने इत उतकी ओ सोजी जाने नाम संग जिनका जिसका मन मान्या नानक तिने निरंजन जान्या गुर प्रसाद आपन आप सुजय तिसकी जानो तृष्णा बुझे साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग त्यो हर जन रहत अंदिन कीर्तन केवल बख्यान ग्रस्त मैं सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसे न लागे दुख जिसको हर प्रद मन चित आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक को किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद तत् सब बुझिया जब देखो तब सब किश मूल नानक सोई सुखम सोई असूर न के जन्मे न किश मरे अपन चलत आप ही करे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनेक जुगत रच थाप उथाप अभिनाशी नाही किछ खंड तारण तार रहो ब्रह्मण।

के सेवक सगल उदाहरण प्रभु के सेवक दुख विसारण आपे मेलय कृपाल गुरु का शब्द जपे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करे बड़ पागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम कर मान जो किश करे सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसे हर संग सहज सुभाय होवे सो होए करणे हार पछाणे सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दिष्टाना जिस ते उपजत सुमहि समाई वही सुख निधान उन्हों।

सबल की चिंता जिस मन माहे तिस्ते बिरथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप अपना सी प्रभा पे आप। आपन किया कछु न होए जेसो प्राणी लोचे कोय तिस बिन नाही तेरे किस काम। कत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोह। प्रभ की जोत सगल कट सो है तन बनता होए क्या को गर्भ। जा सब किस तिस का दिया दर्भ अतसुरा जे को कहावे। प्रभ की कला बिना कहतावे जे को होए बह दाता तिस देन हार जाने गावार। जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानक सोजन सदाय रोग। जो मंदर को था मैं तमंत।

तिसे बुझाई नानका जिस होवै सुपरसन्न अष्टपदी। अविनाशी प्रभ मन में राख मानु की तू प्रीत त्याग तिस्ते परे नाही किच कोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गही सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निदान दयाल बख्शन साथ तेरी की चरणी पाओ नानक कै मन ए अनराव मनसा पूरन सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन परन जाकर नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर अनद रूप मंगल सद जाके सर्व थोक सुनिए करता के राज में राज जोग में जोगी तप में तपी सर गृहस्थ में भोगी त्याय त्याय भगत सुख पाया नानक।

चरण सत सत प्रसन्हार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पीकनहार, नाम सत सत त्यावनहार, आप सत सत सवतारी, आपे गुणकारी, सबद सत सत प्रभक्ता, सुरत सत सत जसुंता, भोजनहार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत स्वरूप हृदय जन मान्या, करन करावन तिन मूल पछान्या, जाके हृदय विश्वास प्रभाया, तत् ज्ञान स्मरण प्रगटाया, पहते निर्भो होए बसाना, जिस ते उपजत समाए समाना, बस महले बस गडाई, ताको पिन न कहना जाई, बुझे भोजन हार विवेक, नारायण मिले नानक एक, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक के निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभ का सेवक नाम के रंग, सेवक को प्रभ पालन हारा, सेवक की राखे निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभ धारे, नानक सो सेवक सास सास समारे, अपने जन का पर्दा टाके, अपने सेवक की सर पर राखे, अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपत राखे।

तरब जिया का राखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलग विडाणी बारंग बार बार प्रभ जपिया पी अमृत ए मन तंत्र पिय नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किछ अवर न ही दिष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन तृप्ताने मन तन नामे नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कौन नानक जन कै सदकाम

तिसका गुण कह एक न जानो आठ प्रहर प्रभ से हजूरे कहो नानक से ई जन पूरे मन मेरे तिन की ओट लेह मंतन अपना तिन जन देह जिन जन अपना प्रभु पचाता सो जन सरब तो का दाता तिसकी शरण सरब सुख पावे तिसके दर सब पाप मिटावे अवर से आनब सगली छाड तिस जन की तो सेवा लाग आवन जान न हो भी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सतपुरख जिन जाने सतगुर तिसका नाओ तिसके संग से कुदरे नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सदगुर सिक्की करे प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिक्की गुर दुर्मत मल हिरे गुर बचनी हर नाम उचरे सदगुर सिक्के बंधन काटे गुर का सिख बिकार ते हटे सदगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख बड़ भागी है सतगुर सिख का हलत पलत सवारे नानक सतगुर सिख को जिय नाल समारे गुर के ग्रह सेवक जो रहे गुर की आज्ञा मन में सहे आपस को कृष्णा जनावे हर हर नाम हृदय सत हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बीचे सतगुर के पास ते सेवक के कार्य राग सेवा करत हुए नहीं कामी तिसको होत परापत स्वामी अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस बिस्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ सर्व निधान जी का दाता आठ पहर पा ब्रह्म रंग दाता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कश परम सहसे आनप लिया न जाइए नानक ऐसा गुरबड पागी पाइए सफल दर्शन पेखत पुनीत पर सच्चरणगत निर्मल रीत पेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुनकर बचन करन आगाने मन संतो का तंपतिया ने पूरा गुर अखे ओ जा का मंत्र अमृत दृष्ट पे कह हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जे बाए कुछ सतनेक

की कीमत किने न पाई, अनेक भगत बंधन नित करे, चरण कमल हृदय सिमरे, सदबलहारी सदगुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, ए हर रस पावे जन कोई, अमृत पीवे अमर सो होई, उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुणदास, आठ पहर हर का नाम ने, सच दे सेवक को दे, माया के संग न ले, मन मेरा के हर हर एक, अंधकार दीपक परगा से, नानक परम मोह दुख तय तेना से, तपत माहे ठांड वरताई, अनत पया दुख नाठे पाई, जन्म मरण के मिटे अंदे से, साधु के पूरन उपदेसे।

तित पाई चुके प्रभ गमन सुन नानक हर हर जसरवन निर्गुण आप सरगुण भी ओही कलातार जिन सगले मोहे अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जाना ही कोए सर्व निरंतर को सोए ओत पोत रव्या रूप रंग पै प्रगात सात के संग रच रचनाय अपनी कल तारी अनेक बार नानक बलहारी सलोक साथ न चाले बिन भजन बिख्या सगले चार हर हर नाम कमावना नानक।

सिमर नाम आधार अवर पाप सब मीत बिसारो चरण कमल रिद में उतारो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हरवत एतन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंड उठतावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख को नित बाचे मीत सो सुख साधु संग परीत जिस सोभा को करे पली करनी सासो पापज हर की सरनी अनेक उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवखद लाए सर्व निदान में हर नाम निधान जब नानक दर गए परवान मन पर बोधो हर के नाए दर्द स्थावत आवे ठाए ताको बिगन न लागे कोई जाके हृदय बसे हर सोए कलता दी ठाडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पौबिन से पूरन होए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित कर जाए बसे अविनाशी कहो नानक काटी जम फांसी तत विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा आवागवन मिटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव रतन जन्म का हुई उदार हर हर सिमर प्राण आधार अनेक उपाव न छूटन हारे अनेक उपाव न छूटन हारे सिमरत शास्त्र भेद बिचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंचत नानक फल पाए संग न चालस तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुत मीत कुटुंब अरबंता इनते कहूं तुम कवन सना था राज रंग माया बिस्तार इनते कहूं कवन छुटकार असस्थी रथ सवारी चूठा डंप चूट पासारी जिंदी ए तिस बुझे ना बिगाना नान बिसार नानक पछताना गुर की मत तू ले याने भगत बिना बो डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जपो अवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो सार पूत सथर को नाव सहत सुबाय नानक गुन गाव गुन गावत उतरस मैल बिनस जाए हो मैं बिख फैल हुए अचिंत बसे सुख नाल सास गरा सर नाम समाल छाड़ से अनप सगली मना साध संग पावे सच तना हर पूंजी संच करो बिहार इहां सुख दर गह जयकार सर्व निरंतर एक को देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एक को जप एक को साला है एक सिमर एक को मना है एक अस्के गुन गाओ अनंत मंतन जाप एक भगवंत एक को एक एक हरियाप पूरन पूर रहे हो प्रव्याप अनेक विस्तार एक ते पे एक अराध पराचत गए।

सरदा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो चरण कमल से लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नित एक ओट एक आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ के दृष्ट महासुख होए हर रस पावे बिरला कोय जिन चाख्या से जन तृप्ता ने पूरन पुरुख नहीं डोला ने सुपर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध के संग परे सरन आन सब त्याग अंतर प्रगासन दिन निवलाग बड़भागी जप्या प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सदगुर ते निर्मल मत लय जन को प्रभ होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल बंधन काट मुकत जन भया जन्म मरण दुख प्रम गया इच पुनि सरदा सब पूरी रब रहे आसत संग हजूरी जिसका साथ इन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाये सो क्यों बिसरे जे काल न पाने सो क्यों बिसरे जे किया जाने सो क्यों बिसरे जिन सब किश दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे गुर प्रसाद को बिरला लाखे सो क्यों बिसरे जे बिखते काटे जन्म जन्म का टूटा गाढ़े गुरपुरै तत एह बुझाया प्रभ अपना नानुजन त्याया साजन संत करो एह काम आम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवर नाम जपावो भगत पाए तर यह संसार पिन भक्ति तन हो सी चार सर्व कल्याण सुख निद नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का होवत नास नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मंतर अंतर ही सुवाओ नेत्रो पेग दरस सुखोय मन बिकसे साध चरण तोय भगत जना कै मंतन रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे करमया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाय प्रभ बख्शंद दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आद पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपे सो होए पुनीत भगत पाए लावे मन ही तम निर्गुण आर नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व कुट मुक्त मोक पाए एक निमक हर के गुण गाए अनक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई वो भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत पली सुकरनी सोभा तनवन

पाप उन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समात तब बैर विरोध के संकमात जब इसका भरण चिन्ह जापत तब हरक शोक को किसे व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तमो कहाँ किस होवत परम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत को किसको गनी जब एक कहर अगम अपार तब नरक सुरक को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ है सो भाई तब जब सकत कहो कि थाए जब आपे आप अपनी जोत तरे तब कवन डर कवन कत डरे आपन चरता करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपनासन तजनम मरण को कहा विनाशन जब पूरन करता प्रभ सोय तब जम की त्रास कहो किस होय जब अवगत गोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा जब नाद निरंजन गोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपन आप यजरजा नानक आपन रूप आप उपरजा जय निर्मल पुरक पुरक पत होता तै बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण ते कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदी ते चल छिद्र लगत को की जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे ते किसे भूख कवन तृप्तावे करन करावन करने हार नानक करते का नहीं सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाए तब कमन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कला आपे पर बीन ते वेद कवतेब कहाँ को चीन जब आपन आप उतारे तो सगन अपसगन कहाँ बिचारे जय आपन ऊच आपने आप निरत है कौन ठाकुर कौन कही है चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जय अचल अछेद अपेद समाया उहां किसे बे आपत माया आपस को आपे आदेश तय गुण का नाही परवेश जय एक है एक एक भगवंता तय कौन अचिंत किस लागे चिंता जय अपन आप पतियारा तय कौन कथ है कौन सुनने हारा वो बेअंत ऊंचते ऊंचा नानक आपस को आपे पहुंचा जय आप रचियो पर पंच अकार तय गुण में कीनो विस्तार पापुन तय पही कहावत को नरक को सुरक बन चावत।

खेल आप कर देखे, खेल संकोचे तो नानक एक है। जब भगत भगत आप जय पसरे पासार संत प्रताप, धूपा काया पे तनी उनकी शोभा उन्हों बनी। आपे कौतक करे नद चोज, आपे रस भोग निर्जोग, जिस भावे तिस अपना नाय लावे, जिस भावे तिस खेल।

0: राष्ट्रपति आप कथे आप सुनने हार अपेक आविष्ठार जातिस पावित असिष्ट उपाय अपने पाणे ले समय तुम ते पिन नहीं किच होए आपन सूत सब जगत पर होए जाको प्रभु जो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जन सब ताके हाथ दीन दयाल नाथ को नाथ जिस राखे तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मन बिसारे तिस तज अवर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जा कैसा बहात अंतर बाहर जानो साथ गुण निधान बेअंत अपार नानक दास सदा बलहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहे ब्याप प्रतपाले जीवन बो पात जो जो रचे सो तिसे त्याग जिस पावे तिस लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करनहार नानक एक जानिया जिन लागाहर एक कहनाए तिसकी आस न बिरती जाए सेवक को सेवा बने आई हुकम बूझ परम पद पाई इससे ऊपर नहीं विचार जाके मन बसिया निरंकार बंधन तोर पे निर्वैर अंदिन पूजे गुर के पैर ए लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले साथ संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देगा करो उधार अमृत वचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का ए सुहाओ आठ पहर प्रभ पेखो नेरा मिटे ज्ञान बिन से अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मन निचे नानक पल पाओ हलत पलत दे ले उसवार राम नाम अंतर उतार पूरे गुर की पूरी दिख्या जिस मन बसते साज परिख्या मंत्र नाम जपो ले बुलाए
1: दर्द मन ते पाओ जाए सचवा पार करो व्यापारी दरगह निभे की तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक बहुर न आवह जाहे तिस्ते दूर कहां को जाए उबरे रखन हारते आए निरपाओ जपै सगल पाओ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन का कोई न पहुंचन हार सिर ऊपर ठंडा गुरसूरा नानक ताके कार्ज पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन

अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिग्री एकस घट माहे अनक रंग नाना दृष्टा है नाम

सुख पाओ। वेद पुराण सिमरत मह देख, ससियर सूर नखियतर मह एक। बाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल न कबहूं डोले।

ओत पोत। गुर प्रसाद भरम का नास, नानक तिन मह एहो विसास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म। संत जना सुन शुभ बचन, सर्व व्यापी राम राम संग रचन।

उत्पत तिस पावै ता करे विस्थार, तिस पावै ता एकंकार। अनिक कला लखी नह जाए, जिस पावै तिस लय मिलाए। कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आप आप भरपूर। अंतरगत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। सर्व भूत आप वरतारा, सर्व नैन आप पे कन्हारा। सगल समग्री जाका तना, आपन जस आप ही सुना। आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया। सबके मद अलिपतो रह, जो किश कहना सो आपे कह। आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता लय समाए। इस्ते होए सो नाही बुरा, उरे कहो हो किने कश करा।

मन जन आया जिस पर साध सब जगत तराया जन आवन का यह सुआओ जन कै संग चित आवै नाओ आप मुक्त मुक्त

तीर्थ नावा जे तिस पावा विण भाणे के नाए करी जेते सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा होरद सुनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जग ले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के

तिस गुण कोय करे, सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनया तरत तबल आकाश, सुनया दीप लो अपाताल, सुनया पोहे न सकै काल, नानक भगत

कागज कलम न लिखनहार मने का बह करण विचार ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए मन सुरत होवे मन बुद्ध मन सगल पवन की सुध मन मोहे चोटा न खाए मन जम कै साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए मन मार्ग ठाक न पाए मन पात सिंह प्रगट जाए मन मग न चले पंथ मन धर्म सेती सरबंध।

जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए किता तान सवाले हो रूप कीती दात जान कौन कूत कीता पसाओ एको कबाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह भग सार असंख मौन लिबलाए तार कुदरत कौन कहा विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वढ़ हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ यार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक सिर करह भार नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह सिर भार होए अखरे नाम अखरी सालाह अखरे ज्ञान गीत गुणगाह अखरे लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग बखान जनेह लिखे तिस सिर नाहे जिव फरमाए तिव ते पाहे जेता कीता तेता नाओ विण नावै नाहि को थाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार भरिय हाथ पैर तन देह पानी धोतै उदर सखेह मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लिय ओह धोए भरिय मत पापा कैसा।

तीर्थ तप दया दत दान जे को पावे तिलका मान सुनिया मनिया मन कीता भाओ अंतरगत तीर्थ मल नहाओ सब गुण तेरे मैं ना ही कोए विण गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आत्म बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवण सो वेला वक्त कवण कवण थित कवण वार कवण सिरुति माहु कवण जित होआ आकार वेल न पाइया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त न पायो का दिया जे लिखन लेख कुरान थित वार ना जोगी जाने रुत माहो ना कोई जा करता सिर ठीका उसा जे आपे जाने सोई क्यों कर आखा क्यों सालाही क्यों वरनी क्यों जाना नानक आखण सब को आख एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका होवै नानक जेको आपा जाने अगै गया ना सो है पातालां पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन इक वात सहस ठारह कहन कतेबा असलू एक धात लेखा होए ता लिखिए लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप सालाही सालाही एती सुरत न पाईया नदियां अतै वाह पवह समुंद न जानिए है समुंद सा सुल्तान गिरहा सेती माल धन कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मनोह न विसरह है अंत न सिफती कहन न अंत अंत न करण देण न अंत अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जापे क्या मनमंत अंत न जापे कीता आकार अंत न जापे पारावार अंत कारण किते बिललाहे ताकि अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाने कोई बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ एवड ऊंचा होवै कोए तसी ऊंचे कौ जाने सोए जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल न तमाए केते मंगे जो दे पार केत्या गणत नहीं विचार केते खाप तुटह विकार केते लै लै मुकर पाहे केते मूर्ख खाही खाहे केत्या दुख भूख सदमार एह पे दात तेरी दातार बंद खलासी भाणै होए होर आख न सकै कोए जे को खाए के आखण पाए ओह जाने जेतिया मोह खाए आपे जाने आपे दे आखे से पे के ही के जिसना बख्शे सिफत सालाह नानक पातशाही पातशाह अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारिये अमुल भंडार अमुल आवह अमुल रह जाहे अमुल पाए अमुल समाहे अमुल धर्म अमुल दीवान अमुल तुल अमुल प्रवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान अमुलो अमुल आख्या न जाए आख आख रहे लिवलाए आखे वेद पाठ पुराण आखे पढ़े करे वख्याण आखे

भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वजह नाद आप नाथ नाथी सब जागी रिद सिद अवरा साध संजोग विजोग दुए कार चलावे है।

अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अपांज है, अगांज है, अपांज है, अचूज है, अचांज है, अमीक है, रफीक है, अतांद है, अबांध है।

अम्ब है, अगम है, अजम है, अभूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग प्रयात छंद, नमो सर्वमान्ये समस्ते निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्वपाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे, इंद्र संगी परमाथे, नमो भान भाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो भान भाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृते, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे, समस्ति स्वरूपे, परपंगी परमाथे, समस्ति विभूते, कलंकंग बिना नेक लंकी स्वरूपे, नमो राजा राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राजा राजेश्वरं परम बिरदे, नमो शस्त्र प्राणे, नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता, अपेखी अपरमी अभोगी अभुगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे, नमो रोग हरता, नमो राग रूपे, नमो साह साहं, नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमो स्नंग स्नानं, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सचदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृतकर्ता अदो उर्द अर्दं अगं उगहर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तोपराजी समस्तस्तामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजु हैं अदेश हैं अपेश है भुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्त निदाने नमस्तुं नरनाथे नमस्तुं परमाथे नमस्तुं अगंजे नमस्तुं अपंजे नमस्तुं अकाले नमस्तुं अपाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक सोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृशं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृद सिदं नवासी चरपट छांद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं तराणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रू आल छंद त्वय प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मान त्रमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व गोपन काल जत्र तत्र विराजहि अवतूत रूप रिसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार।

देवनाद मूर्त था प्यो समय जी थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रचियो स्वम भव गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सुपरम रहत अभूत अलख अभेस अंग राग नरंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप असूत अंग हीन अपंग अनात्मिक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रत पार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जान ही जिह रूप रंग अरेख परम वेद प्राण जा कह नेत भागत नित कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवहि वह चित मधुपार छंद त्व प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन भंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनास आजान बाहो सहान साहो राजान राजपान आन पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग अभंग गतमित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निर्भैन काम आत दुत प्रचंड मित गत अखंड आलिस्य कर्म आदृश्य धर्म सर्वा प्रणाट्य अन्न दंड बढ़ चादरी।

अनास है, उदास है, अतंध है, अबंध है, अभक्त है, विरक्त है, अनास है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलेख है, अदिख है, अलेख है, अपेख है, अटाह है, अगाह है, असंभ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट छांदत्व प्रसाद, सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं तराणं, सर्वं कर्मं, सर्वं तर्मं, सर्वं युक्ता, सर्वं मुक्ता, सावर छांदत्व प्रसाद, नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्मं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिपंगे स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकं शरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांतत्व प्रसाद के जाहर जूहूर है कि हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसनुल चिराग है कि कामल करीम है कि राज करीम है कि रोजी देहांद है कि राज ग्रहिंद है करीमुल कमाल है कि जुरत जमाल है करीमुल कमाल है कि हुसनुल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकान है हिरासुल फिकान है कलंकं प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जबा है के साहिब करा है के नरकं प्रणास है बेहस्तुल निवास है के सर्वुल गवान है।

जमीन उल जमा है, अमीक उल इमा है, करीम उल कमाल है, कि जुरत जमाल है, कि अचलंग प्रकाश है, कि अमितो सुबास है, कि अजब स्वरूप है, कि अमितो भूत है, कि अमितो पसा है, कि आत्म ब्रह्मा है, कि अचलंग अनंग है, कि अमितो अपंग है, मधुपार शांत प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अन गण प्रणाम।

सदा कुर्बानी। बोलो जी, बोलो जी। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवत जी सहाय वार श्री भगवत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लेन त्याय फिर अंगद गुरते अमरदास रामदासे हुई सहाय। हर जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याये जे जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै। घर नौ निदावे ताए सब थाई होए साए दसवीं पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए साए दसा पातशाही दी जोत हाजरा हजूर गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी। पंजा प्यारियां चूहा साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपया वंड छकिया देग चलाई देग वाही देग के अंडिट किया तिना प्यारियां सचियारें दी पवित्र कमाई का ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल तंच रवाए गुरुद्वारे की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां सिखी केसा सवासा संग निभाई धर्म नहीं हारिया तिना की कमाई का ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होए जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छिया रियायत देग देग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी साहे खालसा जी के बोल वाले। बोलना जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाव दान भरोसा दान नाम दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी के दर्शन स्नान चौंकियां चंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसा जी के बोल वाले। बोलना जी। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत दा रखा आप अकाल पुरख वाहिगुरु हे अकाल पुरख सतगुरु जी अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ श्री ननकाणा साहिब होर गुरुद्वारियां गुरुधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल प्यारे पंथ खालसा जी नूं बख्शिश करो निमाणियां दे माण नितानियां दे तान नियोटियां दी ओट गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी धन गुरु नानक साहब जी महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज धन धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी शब्द गुरु दाता जी आप जी दे मुबारक दर ते अरदास बेनती है सच्चे पातशाह आप जी दे पाणी अंदर चार पहर रहण बतीत हुई है सतगुरु जी अमृत वेले आप जी दे दर्शन दीदार नाल दिन की शुरुआत हुई है सच्चे पातशाह जी आप जिया ने सचखंड तो चल के तख्तां ते मेन हाल विच प्रकाशवान होके दर्शन बख्शिश कीते ने महाराज जी उपरंत सुखमनी साहब जी का पाठ पवित्र हुक्म बख्शिश कीता सुखमनी साहब जी का पाठ होया पंजा बाणिया का नितनेम होया सच्चे पातशाह आप जी की हजूरी विच विचरदे आं आप जी की गोद विच बैठे आं बेअंत भुल्लां हो जांदियां ने बख्श लैणा सच्चे पातशाह जी कड़ा प्रसादी देग हाजर है गुरु गरीब निवाज आप जी दर प्रवान करो भोग लग्या प्रसाद जो भी छके सतना श्री वाहिगुरु वाहिगुरु जपे बेअंत संगतां ने अमृत वेले तो आप जी दे चरना कमला दियां हाजरियां भरियां हने आप जी दे दर्शन दीदार कीते ने हाजरियां प्रवान तिल फुल पेटा प्रवान महाराज जी दासरिया ने दासरिया के परिवार ने हाजरियां भरियां दाता जी आप जी जानी जान हो बिन बोलिया सब किस जानदा किस आगे की चे अरदास नानक कट कट एको वर्त दा शब्द करे प्रगास महाराज जी सारे कारज दास करने भजन बंदगी दा प्रताप बनाउणा महाराज जी पंथ दी सदा चढ़दी कला जय जयकारा चोगते निशान रहे पंथ महाराज के लागते दीवान रहे गुरु महाराज के महाराज जी पंथ नूं सदा एकता चढ़दी कला बख्शिश करियो महाराज जी अपने दर दे सेवकां नूं दासरे नूं सदा
ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਰਸਤਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਰਗਾਹੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਗ ਲਗਾਇਓ ਚੋੜੀਆਂ ਪਰ ਦੇਣਾ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਲਈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਚੋੜੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਿਓ ਜੀ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਪਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ, ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਖੁਆਰ ਹੋਏ, ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ, ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕਲਗੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।

मैं आशा रखी चित में, मेरा सब हो दुख गवाए जियो। मैं आशा रखी चित में, मेरा सब हो दुख गवाए जियो। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, जैतसरी महला पंजवां। कोई जन हरस्यों देवे जोर, चरण गहो बको शुभ रसना, दीजह प्राण अकोर। कोई जन हरस्यों देवे जोर, चरण गहो बको शुभ रसना, दीजह प्राण अकोर। रहा मन तन निर्मल करत के आरो, हर सिंचै सुधा संजोर। या रस मह मगन होत कृपाते, महा बिख्याते तो। आयो शरण दीन दुख भंजन, चितवो तुमरी और। अप है पद दान सिमरन स्वामी को, प्रभ नानक बंधन छोर। आयो शरण दीन दुख भंजन, चितवो तुमरी और। अप है पद दान सिमरन स्वामी को, प्रभ नानक बंधन छोर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैत श्री महला पंजवां। कोई जन हरस्यों देवे जोर, चरण गहो बको शुभ रसना, दीजह प्राण अको। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दिन की शुरुआत महाराज जी के दर्शन दीदार नाल आप सारियां संगतां कर रहे हो, भागां वाले हो, कर्मां वाले हो, जिन्हां दे जीवन विच सतगुरां दी पावन अमृतमई बाणी दा प्रकाश, महाराज जी दी गोद विच बैठण दा सुभाग समा प्राप्त होवे। महाराज कहिंदे ने, वडभागी हर संगत पावे, भागहीन भ्रम छोड़ रखा। बिन भागां सतसंग ना लभे, बिन संगत मैल परिजे जीओ। सच्चे पातशाह उन्हां नूं सदा निवाज के रखदे ने, निहाल रखदे ने, जिहड़े महाराज जी दी गोद विच बैठ के गुरु गुरु जपदे ने। पवित्र हुक्मनामा आप जीआं ने सरवण कीता है, सब दियां हाजरियां दर परवान। आओ हुण आसा दीवार जी दे संपूर्ण कीर्तन, साडे अपने कीर्तनीए भाई साहब जी, भाई रचपाल सिंह जी, भाई धीर सिंह जी अते भाई जयपाल सिंह जी, वो आप जीआं नूं बड़े प्यार नाल सरवण कराउणगे जी। सबना दी हाजरी दर परवान करन। महाराज खुशियां, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा पला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।

0: सप्तान सत्य सबजोर सच्ची तेरी सत्य सच्ची सालाह सच्ची तेरी पुत्र सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मृत मैं सो कत निकत महला पहला
1: वड्डी वड्याई जा वड्डा ना वड्डी वड्याई जा सच न्याओ वड्डी वड्याई जा ने चलता।

हर सिंचाय सुधा संजोर, या रसमह मगन होत कृपाते, महाबिख्याते तोर, आयो शरण दीन दुख भंजना, चितवा तुमरी ओर, अपै पद दान सिमरन स्वामी को, प्रभ नानक बंदन शोर, आयो शरण दीन दुख भंजना, चितवा तुमरी ओर, अपै पद दान सिमरन स्वामी को।

निर्मल बाणी शब्द वखाण है, सच्चे सेव सदा सुख पायन, नौनिद नाम मन वसावणया। सोथान सुहाया जो हर मन पाया, सत संगत बह हर गुण गाया। अन दिन हर सला है साचा, निर्मल नाद वजावणया। मन मुख खोटी रास, खोटा पासारा, कूड़ कमावन दुख लागे पारा।

कमावह फिर बेष्टा माहे पचावणया। मुकते सेवे मुकता होवै होमै ममता सब देखोवै। आन दिन हर जियो सच्चा सेवी पूरे भाग गुर पावणया। आपे

सेवह सच समावह सच्चे के गुण गावणया रहाओ। पंडित पढ़े साधना पावह दूजे पाए माया मन परमावह माया मोहे सब सुध गवाई कर आवगण पछोतावणया।

कहाओ। गुर प्रसादी सहज को पाए, दुबदा मारे इकस स्योले बलाए। नदर करे ता हर गुण गावे, नदरी सच समावणिया

अमृत पीवै जिसनो आप पियाए, गुर प्रसादी सहज रिवलाए, पूरन पूर रहया सब आपे, गुरमत नदरी आवणया आपे आप निरंजन सोई, जिन सिर जी

सहजे सच समावणिया। माया मह फिर चेतन लाए, गुर कै शब्द सद रह समाए। सच सलाहे सब घट अंतर।

दर सच्चै शोभा पावणया। निर्मल ते सब निर्मल होवै, निर्मल मनुआ हर शब्द परोवै। निर्मल नाम लगे बड़ भागी, निर्मल नाम सुहावणया। सो निर्मल जो शब्दे सोहै।

ऊंचा कूके तनह पछाड़े माया मोहे जो है आजम काले माया मोह इस मन है नचाए अंतर कपट दुख पावणिया गुरमुख पा।

नौ दर ठाके धावत रहाए, दसवें निज घर वासा पाए। उथे अनहद शब्द वजे दिन राती, गुरमति शब्द सुनावणिया। बिन शब्द अंतर आनेरा, ना वस्तल है ना चूकै फेरा। सतगुर हथ कूंजी होरत दर खुले नाही, गुर पूरे पाग मिलावणिया। गुपत प्रगट तू सबनी थाई, गुर प्रसादी मिल सोजी पाई। नानक नाम सलाहे सदा तू, गुरमुख मन वसावणिया। माज महला तीजा, गुरमुख मिलै मिलाए आपे। काल ना जो है दुख ना संतापे। हमें मार बंधन सब तोड़े, गुरमुख शब्द